0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহ, এতিয়া 6 বজাত হিন্দী আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
2: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1 दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र

0: शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The nation celebrated its 80th Independence Day yesterday. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi hoisted the national flag from the ramparts of the Red Fort and made several important announcements. Addressing the nation, the Prime Minister said, over the past 12 years, crores of citizens of the country, with their determination and dedication, made every possible effort to take the country to new heights. The Prime Minister stressed that higher dreams and stronger resolutions raise the overall scale and capability of the nation's efforts.
2: Koi bhi rashtra tab mahaan banta hai, jab apne sapnon, apne sankalpon aur apne samarth ke dam par aage badhta hai. Bade sapne हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: Stressing on the empowerment of youth and women for a Viksit Bharat, Prime Minister Modi announced to provide free online coaching for poor and middle class families for various public examinations. He also announced that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign. Launched from the High Commission of India in Fiji, the relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. Union Cooperation Minister Amit Shah will lay the foundation stone of a new dairy plant at the Alwar Saras Dairy Complex in Alwar, Rajasthan today. The Ministry of Cooperation informed that at the event, the e-foundation stone will be laid and various development works worth 6,262 crore rupees across 17 districts of Rajasthan will be e-inaugurated. Additionally, appointment letters will be distributed to more than 10,500 newly appointed personnel under the Rozgar Utsav. Vice President C.P. Radhakrishnan will

0: एक एक मिल ग्यारह होते, एक एक मिल ग्यारह होते, हम तब बड़े दिलेर हैं, हम तब बड़े दिलेर हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं दूसरे अंतरे को। हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं, एक एक मिल ग्यारह होते, हम तब बड़े दिलेर हैं। क्या लिखा आपने, आप पढ़िए।
1: हम किसी से कम नहीं, हमें किसी का डर नहीं, एक एक मिल ग्यारह होते, हम सब बड़े दिलेर हैं।
0: ठीक है,
2: तुम्हारे लिखिला न जानो। यार पिसर स्थाई लो आको घूरी आहिबा। द्वितीय अंतरातुर पिसर तृतीय अंतरातु लिखिबा।
0: जीवन तरस बनाएंगे, जीवन तरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे। तीसरी पंक्ति है, कोई मानव दुखी रहे ना, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी तेर है। लिख लिया
1: जी सर।
0: मैं पढ़ता हूँ, आप देख लीजिए। जीवन तरस बनाएंगे, धन धान्य उपजाएंगे, कोई मानव दुखी रहे ना, ऐसी सबकी तेर है। ये था हमारा तीसरा अंतरा। फिर हमारी स्थाई आ जाएगी। हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे। ठीक है
1: जी सर।
0: अब मैं पूरा गीत पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए। हम एक हैं,
1: हम एक हैं,
0: हम एक थे,
1: हम एक थे,
0: हम एक रहेंगे,
1: हम एक रहेंगे,
0: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
1: मिलकर कदम बढ़ाएंगे,
0: आगे बढ़ते जाएंगे,
1: आगे बढ़ते जाएंगे,
0: हमको रोक सके ना कोई,
1: हमको रोक सके ना कोई,
0: हम वायु का वेग हैं,
1: हम वायु का वेग हैं,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: दूसरा अंतरा है, हम किसी से कम नहीं,
1: हम किसी से कम नहीं,
0: हमें किसी का डर नहीं,
1: हमें किसी का डर नहीं,
0: एक एक मिल ग्यारह होते,
1: एक एक मिल ग्यारह होते,
0: हम सब बड़े दिलेर हैं,
1: हम सब बड़े दिलेर हैं,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
0: जीवन तरस बनाएंगे,
1: जीवन तरस बनाएंगे,
0: धन धान्य उपजाएंगे,
1: धन धान्य उपजाएंगे,
0: कोई मानव दुखी रहे ना,
1: कोई मानव दुखी रहे ना,
0: ऐसी सबकी तेर है,
1: ऐसी सबकी तेर है,
0: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे,
1: हम एक हैं, हम एक थे, हम एक रहेंगे।
0: लिख लिया आपने ये गीत
1: जी सर।
2: बारू एतिया तुमालुके गीतटी शिकिबलै चेष्टा करा। ए गीतटी कहार बातलत गुआ होइसे। প্রথমে তোমালোকে স্থায়ীটো শিকি লোৱাচোন।

0: ফাইনেলত এফ চি দিল্লী মণিপুৰৰ এফ চি ৰেংদাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। খেলখন বিয়লি 4 বজাত আৰম্ভ হ'ব। কলকাতাৰ বিবেকানন্দ যুৱ ভাৰতী ক্ৰীড়াংগণত আজি সন্ধিয়া 7 বজাত হ'বলগীয়া দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আই এছ এলৰ চেম্পিয়ন ইষ্ট বেংগল এফ চি সেনাবাহিনীৰ ফুটবল দলৰ সন্মুখীন হ'ব। কাইলৈ হ'বলগীয়া তৃতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মোহনবাগান জামছেদপুৰ এফ চিৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। একেদিনাই সন্ধিয়া 7 বজাত শ্বিলঙৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া চতুৰ্থখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি শ্বিলং লাজং এফ চিৰ সন্মুখীন হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रैली सैन फ्रांसिस्को में सम्पन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
4: हमने पिछले दिनों AI इंपैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
3: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
4: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
3: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
4: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
3: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खेले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
4: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं कर

0: जाता है। भारत उस पर बल देगा और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
3: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग कर रहे हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा

0: ताकि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत। नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग

0: सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
2: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI skill के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030, India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
2: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. More from our correspondent.
3: External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign launched from the High Commission of India in Fiji. The relay carried the spirit of the Tiranga from one sunrise to the next, bringing together the Indian community and friends of India across the world. The relay ended with the flag hoisting by the Consulate General of India in San Francisco. The relay also marked 150 years of Vande Mataram, celebrating its enduring legacy as a symbol of India's national spirit and pride. The relay witnessed

करता हूँ क्या मेरा सपना है ट्रैवल करने का, मैं ट्रैवल के लिए बहुत कुछ झेल सकता हूँ। एंड मैं लद्दाख पहुँचा बहुत मुश्किल से, मतलब 2 महीने में मैं कितना दिन भूखे रहूँगा, कितना दिन सोया भी नहीं होगा अच्छे से, ना मेरे पास उतने अच्छे टेंट भी नहीं थे। मैं बहुत 1000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था ऐसे ही नॉर्मल साइकिल से। उसके बाद मैं दिल्ली में 2 वीक्स काम करके टेंट लिए ताकि मैं लद्दाख में थोड़ा सर्वाइव कर पाऊँ अच्छे से। तो वहाँ टेंट एंड स्लीपिंग बैग लेके मैं लद्दाख खारदुंगला पास एक नॉर्मल साइकिल से पहुंचा। 2 महीने लगे मुझे बिहार नालंदा से, एंड तब तक मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था। लद्दाख में मैं सोनम वांगचुक सर से मिला, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पे रुक सकते हो 1 वीक, फिर उसके बाद आराम से जाओ। तो मैं उनके पास रुका 1 वीक, एंड अच्छा लगा उनके पास रुक के बात किया। फिर उन्होंने लास्ट डे मुझे सरप्राइज दिया, एक ब्रांड न्यू साइकिल, गियर का साइकिल दिया, क्योंकि मेरा साइकिल जो था नॉर्मल साइकिल था एंड वो पहाड़ों में चलता नहीं है। मैं पैदल ही चला था, 400 किलोमीटर पैदल चला था लद्दाख जर्नी करते वक्त। वो साइकिल से फिर बहुत लोग मेरे जर्नी में जुड़े, बहुत लोग थोड़े थोड़े पैसे देते थे मंथली ताकि मैं अच्छे से ट्रैवल कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि मेरा था कि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूँ। एंड लोगों को मेरे पे बिलीव था कि ये कुछ करेगा आगे जाके, तो लोग मेरे जर्नी में जुड़े। एंड फिर मैं वो साइकिल से स्टार्ट किया, मैं हिमाचल उत्तराखंड ट्रैवल किया, एंड इसमें मेरा 4 मंथ्स गया, 4 मंथ्स मैं ट्रैवल किया। एंड 4 मंथ्स के बाद मुझे यूपी में ये छोटा सा पप्पी जो मैं दूर से देख रहा था, तो मुझे लगा ये एक्सीडेंट में मरी हुई है, तो वहाँ पे मैं इसको फर्स्ट टाइम देखा। वो दिन था 3 जुलाई 2024, ठीक 4 महीने बाद, जब मैं जर्नी स्टार्ट किया था ठीक 4 महीने बाद मुझे चार्ली दिखी, जिसका एक पैर पूरा टूट रखा था, कोई एक्सीडेंट करके गया था रोड पे, हाईवेज पे। मैं इधर एमपी तरफ जा रहा था, तो यूपी गाजियाबाद में दिल्ली से बस थोड़ा पीछे ही ये मिली थी मुझे। तो मैं इसको बस साइड करने गया एंड देखा कि ये तो जिंदा है। तो मैं छोटा सा बैग था मेरा जो पीठ पे रखता था वो आगे लिया, एंड इसको लेके मैं 60 किलोमीटर उस दिन ऐसे ही साइकिल चला के एक जो मेरा जान पहचान के थे मैं वहाँ पे लेके गया, इसको ट्रीटमेंट करवाया। एंड ये वहाँ पे कुछ दिन के बाद ठीक हो गई, मतलब एक पैर से वो लंगड़ा के थोड़ा थोड़ा चल रही थी। फिर मैं सोचा इसको वहीं पे रख दूंगा रिलेटिव्स के पास में। तो वहाँ जब इसको रख के मैं साइकिल लेके जाने लगा, वो तीन पैर से मतलब ऐसे दौड़ते हुए एंड मेरे पास आई, एंड मेरा पूरा फेस चाटा, पूरा एकदम प्यार किया कि जैसा लग रहा था ये बोल रहा है कि मुझे छोड़ के कैसे जा रहे हो वैसा करके। एंड मेरे भी आंखों में आंसू हो गया, इसके साथ बहुत अटैचमेंट हो गया था तो मेरे भी आंखों में आंसू हो गया। फिर मैं सोचा इसके साथ भी कर सकता हूँ मैं ट्रैवल, मैं संभाल सकता हूँ, छोटा सा बच्चा ही तो है, पप्पी तो है, संभाल सकता हूँ, कहीं छोड़ने से अच्छा है कि मैं अपने पास ही रखूँ, जब मेरा जर्नी ख़त्म हो जाए तो मैं लेके जाऊँ इसको घर पे। वैसा करके मैं छोटा सा कैरेट स्टार्टिंग में अपना हैंडल में ही छोटा सा वो सब्जी का कैरेट होता है, मैं वो बांध दिया बंजी रोप से, एंड उसी में ही हम लोग ट्रैवल करते रहे। जैसे मैं सोलो ट्रैवल करता था उससे बहुत ही अच्छा लगने लगा, मेरा एक कंपेनियन मिल गया जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जो मुझे एकदम बहुत समझने लगा, अच्छा लगता था मुझे इसके साथ ट्रैवल करके। लोगों का और इंट्रैक्शन बढ़ गया कि वाह डॉग के साथ ट्रैवल कर रहा है, लोग कितना लोग मुझे देख के बहुत लोग डॉग अडॉप्ट किया, तो अच्छा लगता है। मैं एक क्रुएल्टी के लिए भी बोलता हूँ लोगों को कि अच्छा बी काइंड टू एनिमल्स, बहुत अच्छा से व्यवहार करें एनिमल्स को, मारे ना, अगर आप कुछ खिला भी नहीं सकते तो कम से कम मारो मत, वैसा करके मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ। एंड मुझे फिर तभी से मेरा दिमाग में आ गया कि मैं इससे मिलने के बाद, पहले था मेरा कि मैं कुछ करूँगा एनिमल्स के लिए, लेकिन खुद पे बिलीव नहीं था कि मैं एनिमल शेल्टर खोल सकता हूँ, लेकिन इसके मिलने के बाद खुद पे लगा कि भाई कोशिश करते हैं, होगा नहीं होगा बस ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना हमारे हाथ में। मैं कोशिश करता हूँ कि एनिमल शेल्टर मैं बना पाऊँ बिहार नालंदा जैसे जगह पे, क्योंकि मैं पूरा बिहार ट्रैवल किया हूँ एंड बहुत ही मतलब वहाँ पे क्रुएल्टी केसेस होते हैं, शेल्टर नहीं है, डॉग्स का ट्रीटमेंट, छोटा सा घाव हो जाता है धीरे धीरे बढ़ते हुए, वो एक दिन मर जाता है। तो ये सब देखते हुए मैं सोचा एनिमल शेल्टर बनाने के लिए मैं पूरा इंडिया राइड करता हूँ चार्ली के साथ में। फिर वहाँ से मैंने यूपी से जब मैं स्टार्ट किया तो दिल्ली गया, दिल्ली से राजस्थान गया इसके साथ में ही, राजस्थान से फिर मैं एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर मैं तमिलनाडु धनुषकोडी तक गया और रामेश्वरम तक, एंड आसपास के जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग मैं वो भी कंप्लीट कर रहा था, ताकि जब मैं ये जर्नी करूँ तो लोगों को भी बोल सकूँ कि मैं ये सब दर्शन भी किया हूँ। तो ये सब फिर मैं आंध्र प्रदेश आया, आंध्र प्रदेश से फिर मैं इधर फिर महाराष्ट्र इंटर किया, फिर यूपी किया, फिर वेस्ट बंगाल, ऐसे करके मेरा बहुत सारा स्टेट्स हो गया, हरियाणा, पंजाब, ये सब भी ट्रैवल किया मैंने। तो मेरा पूरा साइकिल से

0: मैंने 17 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी ट्रैवल किया। मैंने वेस्ट बंगाल ट्रैवल किया, सिक्किम ट्रैवल किया। तो लास्ट मेरा सिक्किम जर्नी था, वहाँ पे मेरा रिब्स में पेन हो गया। रिब्स में पेन होने के बाद मेरा जर्नी, मतलब साइकिल ऐसे ही, मैं सिक्किम का रोड बहुत अपहिल है, तो मैं पूरा वेट के साथ ऐसे धक्का मार के जा रहा था, तभी मेरा ये इंजर्ड हो गया रिब्स। तो डॉक्टर से सबसे दिखाया, वो बोला अभी तो साइकिलिंग तुमको बंद करना होगा। तो मैं 2 महीने 2.5 महीने अपना ट्रीटमेंट करवाया। एंड फिर एक मैम आए, द जारा एनिमल प्रोजेक्ट, वो क्या करते हैं, फीमेल डॉग का आस्टरेशन करवाते हैं। वो 17,000 डॉग का आस्टरेशन करवा चुके हैं, वो द जारा एनिमल प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ जुड़ के ये द जारा एनिमल प्रोजेक्ट को तुम लोगों तक पहुँचा सकते हो। आस्टरेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बर्थ कंट्रोल क्यों इम्पॉर्टेंट है फीमेल डॉग मेल डॉग के लिए, तो ये लोगों को तक पहुंचा सकते हो, एंड बदले में मैं तुम्हें एक स्कूटी स्पॉन्सर करता हूँ। तो वो जब मैं स्कूटी से सोचा कि हाँ अच्छा कॉज के लिए है, जुड़ सकते हैं, तो मैं फिर साइकिल अपना सिलीगुड़ी में ही रख के मैं स्कूटी से जर्नी कंटिन्यू किया। एंड बहुत ही अच्छा अभी तक रहा। मैंने अभी स्कूटी से मेरा 2 ही स्टेट्स हुआ है, मैं असम पूरा ट्रैवल किया, नागालैंड ट्रैवल किया हूँ, एंड स्कूटी से मैंने 3,000 किलोमीटर कम्प्लीट किया। अभी तक मेरा 19,000 किलोमीटर हो चुका है, 90,000 to 20,000 किलोमीटर मैं ट्रैवल कर चुका पूरे इंडिया में, एंड 19 स्टेट्स 3 यूनियन टेरिटरी ट्रैवल कर चुका मैं चार्ली के साथ में, फॉर ए कॉज कि मैं एक एनिमल शेल्टर बना सकूँ। एंड इस रास्ते में मैं फंड रेज कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ कि मैं जब एनिमल शेल्टर खोलूँ तो लोग मेरे सपोर्ट करें, एंड एक बिहार में अच्छा शेल्टर हो जहाँ ट्रीटमेंट हो सके डॉग्स का, अच्छा से केयर हो सके, मैं फीड करा सकूँ, जो भी डॉग्स थे उसको ला के अपने पास रख के उसका ट्रीटमेंट करवा सकूँ। तो इसीलिए मैं पूरा ट्रैवल कर रहा हूँ, एंड अभी कुछ स्टेट्स और बाकी है, फिर इसके बाद मेरा जर्नी ख़त्म होगा, दिन फिर मैं बिहार नालंदा में शेल्टर जा के मनाऊँगा।
1: बातत बहु बाधा बिकिनी किंतु अति मरम लगा पुआलीटू जाक चार्ली बुली माते सोनुए। चार्लिक लगत लई एई जे यात्रा, एई यात्रात সোনু যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈছিল, এই যাত্ৰা যেন তেওঁৰ বাবে আৰু বেছি সুখৰ আনন্দদায়ক হৈ পৰিছিল। সোনু আৰু চাৰ্লি হৈ পৰিছিল অন্তৰংগ বন্ধুৰ দৰে। যেতিয়া সোনু ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ভ্ৰমণ কৰিবলৈ এখন চাইকেল লৈ, তেতিয়া বাৰু তেখেতৰ পিতৃ মাতৃয়ে বাধা দিয়া নাছিল নে?
0: ঘৰ চে এলাও কা ইয়ে কি মই মম্মী পাপা চে বচপন চে মই দূৰ ৰহো, দাদা দাদী কে পাছ মই পলা বড়া। জব দাদা এক চলে গে 3 সাল পহলে ও চল গে, तो तभी मेरा दिमाग में ये सब आया, तभी मैं ट्रैवल भी स्टार्ट किया, क्योंकि कितना भी प्लान कर लो लाइफ प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं निकल गया था ट्रैवल पे, एंड मम्मी पापा बिलीव करते कि कहीं भी रहेगा तो सेफ रहेगा, क्योंकि मैं बहुत काम किया हूँ। जब बहुत कर्ज था तो मैंने कर्ज उतारने के लिए पैसे बहुत बाकी थे फैमिली के पास, तो वो पैसे लेने के लिए बहुत लोग घर पे आते थे, कुछ बोलते थे, तो देखते हुए मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं 1 साल पेट्रोल पंप पे काम किया था, एंड फिर मैंने 6 महीने दिल्ली में फ्रूट्स भी बेचे हैं ठेला पे। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता कि मैं ठेला का भी चलाऊंगा जब पढ़ाई कर रहा था। तो
2: पढ़ाई कब तक किया?
0: मैं बीए 3rd ईयर तक पढ़ा, एंड फिर जब मैं पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था तो मेरा फाइनल एग्जाम रह गया था, छूट गया था, तो ड्रॉप आउट 3rd ईयर तक।
1: सोनु भ्रमण जी समय समय विभिन्न ठाई जा विभिन्न राज्य विभिन्न ठाई विभिन्न धरण व्यक्तिक पा তেওঁলোকৰ সৈতে হয়তো কিছুমান বিশেষ অভিজ্ঞতা হৈছে, ভাল লগা কিছু মুহূৰ্ত পাৰ কৰা হৈছে। যিদৰে গুৱাহাটীলৈ আহোঁতে চন্দ্ৰানী দাসক লগ পোৱা হৈছে, আমি লগ পাইছোঁ, চন্দামিতা অভয় তেওঁলোকে লগ পাইছে, এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ব্যক্তিক লগ পাই নিশ্চয় কিবা বিশেষ অভিজ্ঞতা হৈছে। আজি নিশ্চয় শ্ৰোতাসকলক কিবা ক'বলৈ মন যাব সেই বিষয়ে।
0: অ'কে, স্পেচিয়েল ইয়ে কি জেছে মই আলগ আলগ ষ্টেটছ মে ট্ৰাভেল কৰতা হু, एंड इतने काइंड लोग मिलते हैं ना इंडिया में स्पेशली, कि बहुत काइंड लोग। जैसे मैं अभी असम का बात करूँ, अभी मैं असम में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो असम का बात करूँ क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं। मैं हर जगह कैंपिंग टेंट लगाता हूँ पेट्रोल पंप पे, लेकिन मैं कम से कम 1.5 से 2 महीना असम में रहा, इधर उधर ट्रैवल किया, पूरा असम ट्रैवल किया। इतने फ्रेंडली लोग, वेलकमिंग लोग हैं कि वो खुद भी घर पे बुला लेते हैं, सब कुछ छोड़ के मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे उनका कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, सब कुछ वो सोचते हैं ये मोमेंट है ना जो वो स्पेशल है, मेरे साथ छोटा सा ही टाइम उनको उनके लिए बिताना ना उनको बहुत स्पेशल बना देता है। एंड मेरे लिए लगता है कि मैं कहाँ था 2 साल पहले, एंड अभी मेरे साथ छोटा सा ही टाइम कोई बिताता है तो उनको बहुत स्पेशल लगता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बात करना, वो कैसे वो लाइफ जी रहे हैं वो सब सीखता हूँ। एंड बहुत कुछ ये जर्नी में बुरा भी हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं अच्छे लोगों को ध्यान में रखता हूँ, अच्छे लोगों को याद रखता हूँ, एंड बहुत ही अच्छा लगता है ये जर्नी ना हम लोग।

0: ফির ও বাদ মে ভি হেল্প কর সকতে ভাষা হ্যাঁ
1: সোনু ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে বিহারৰ অলিয়ে গলিয়ে পথত বহুতো কুকুর দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহুতৰ হয়তো এই জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি বিশেষ মৰম নাথাকিব পাৰে, কোনোবাই হয়তো এনেকুৱা জীৱ জন্তুক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে, এনেকুৱা চিন্তা কিছুমান নিশ্চয় মনলৈ আহিছিল আৰু সেই কাৰণেই এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল। কিন্তু চাৰ্লিক লগ পোৱাৰ পাছত এই চিন্তাটো আৰু বেছি গাঢ় হৈছিল নেকি?
0: পেলে থা মেৰা কি বহুত প্যাৰ কৰা থা মুঝে দাদাজী 5 ৰূপে 10 ৰূপে ভি দেতে থে তো মেৰে ডগছ কো বিস্কিট খিলা দেতা থা। বহুত অচ্ছে লগতে থে মুঝে ডগছ, লেকিন কৰনা থা বহুত কুছ, লেকিন ও বিলিভ নহীঁ থা কি মেঁ কৰ পাউঙ্গা। লেকিন চাৰ্লি জব মেৰে লাইফ মে আই না তো এক বিলিভ হো গয়া কি মেঁ কৰ সকতা হুঁ, কুছ ভি কৰ সকতা হুঁ এসা কৰকে। এণ্ড মেঁ এনিমলছ কে লিয়ে বহুত অটাচ হো গয়া জব ইসকো দেখা তো অর ভি লগা কি ইসকে জেসে কিতনে সারে ডগস হোঙ্গে জো ঘর নহীঁ মিলতা উনকো, ট্রিটমেন্ট নহীঁ মিল পাতা। জেসে ইয়ে ভি মুঝে अगर अभी ये मेरा कितने डॉग्स का ये लाइफ चेंज किया, मेरा भी लाइफ चेंज किया। अभी इसको कोई रोड पे ऐसे ही मैं नहीं देखता तो ऐसे ही ये मर जाती। तो मैं सोचता हूँ इसके जैसे कितने सारे डॉग्स हो गए जिसको मेरे जैसा सोनू नहीं मिलता रहेगा। तो मैं उसके लिए सोनू वो बनना चाहता हूँ जो मेन टाइम पर उनका हेल्प कर पाए, रेस्क्यू कर पाए। तो मैं इसलिए भी खुद पर बिलीव हो गया कि मैं करूँगा एक दिन जरूर शेल्टर खोलूँगा, एनिमल शेल्टर जरूर, एंड वो जल्दी पूरा होने वाला है। एंड ऐसे बिहार में बहुत क्रूएल्टी होता है, हर जगह डॉग्स हैं वहाँ पे, और लोग बहुत कम लोग हैं जो प्यार करते हैं डॉग्स के साथ, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते क्योंकि वहाँ के लोग भी वैसा है, मतलब बहुत गरीबी में जी रहे हैं वैसा। लेकिन वो एक होना चाहिए दिल से कि प्यार होना चाहिए, वो नहीं है वहाँ पे। असम में मैं पूरा ट्रैवल किया, हर लोगों के पास मतलब ऐसा है डॉग्स है, बहुत लोगों के पास, बहुत कम ही लोग जिनके पास डॉग्स नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत एनिमल को बहुत पसंद करते हैं लोग, हर जानवर को। बहुत अच्छा लगा असम में ट्रैवल करके। तो मैं बोलूँगा अगर असम जैसा भी बिहार हो जाता है एनिमल्स के प्रति तो बहुत ही अच्छा होगा, कि हर जगह शेल्टर खोलने का भी नहीं होगा वैसा।
1: सोनू चार्लिक लगत लई एक दीघलिया समय
0: 2 साल 1 महीना हो गया उसे।
1: भारतवर्ष विभिन्न ठाई लई जुआ होइसे, विभिन्न व्यक्तिक लग पुआ होइसे, बातत एनेकय गई थका अवस्था केतियाबा किबा असुविधार सम्मुखीन होइसे नेकि? চার্লি লগত থকা কিবা অসুবিধা হয়েছে নাকি বা কিবা প্রত্যাহ্বানের সম্মুখীন হয়েছে নাকি?
0: প্রবলেম তো হতা হ্যাঁ, লেকিন এসা এসা আমার বন্ড হো গিয়া না চার্লি কা। মানে এক ইনসিডেন্ট বতাতা হুঁ, প্রবলেম বহুত হতা হ্যাঁ, জেসে ডগস কো দেখ কে ও চার্লি ভি রিয়্যাক্ট করতি হ্যায় সাম টাইম। লেকিন চার্লি বহুত হি ফ্রেন্ডলি হ্যায়, মতলব দূসরে ডগস কে সাথ খেলনে কো জাতি হ্যায়, উছল কুদ করতি হ্যায়। জো ফ্রেন্ডলি হ্যায় ডগস উসকে সাথ খেলেগি, জো আগর অ্যাগ্রেসিভ ডগ হ্যায় उससे भाग के आ जाएगी मेरे पास। लोग से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग कभी कभी स्टे करने नहीं देते हैं, ढाबा के बाजू में टेंट भी नहीं लगाने देते, पेट्रोल पंप पे भी। तो लेकिन ये सब मैं झेल अच्छा है, मना करने से भी ठीक ही लगता है कि कोई नहीं आगे जाके किसी लास्ट तक कुछ बेटर ही हो जाएगा। लेकिन हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया ना, क्योंकि मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में इतना मतलब चार्ली ने होशियारी दिखाया, मैं बेहोश हो गया था। मैं पहले महाराष्ट्र का बात है, महाराष्ट्र गोवा हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे मैं बेहोश हो गया। एंड उससे जस्ट पीछे ही हम लोग 400-500 मीटर पीछे ही ब्रेकफास्ट करके वड़ा पाव एंड चार्ली को कुछ खाना वाना खिला के निकले ही थे, तभी एक्सीडेंट हो गया मेरा। एंड मैं बेहोश, एंड मेरा पैर में ऐसे गड्ढे हो गए थे, यहाँ पे पूरा गड्ढे हो गए थे ऐसा कि पूरा ब्लड आ रहा था। तो चार्ली क्या, चार्ली पैर एक कैरेट में थी है, उसको बांध के भी नहीं रखता हूँ, तो वो उछल के वो तो गिर गई, मैं बेहोश, मेरा साइकिल भी उधर। एंड चार्ली क्या कि पीछे ढाबा पे भाग के गई एंड वहाँ पे भूख रही थी। एंड वो लोग भी समझ गए कि अभी तो ये लोग गया है, वो लोग आगे जैसे ही बढ़े मैं दिखाई दिया एंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए। एंड जब मैं वहाँ से आया ना तो मैं पूरा वो वहाँ पे रोया जब मैं हॉस्पिटल से आया। एंड हॉस्पिटल का भी अलग सीन था, वो लोग टाके देने वाले थे लेकिन मेरा वहाँ जान पहचान को उस वक्त कोई नहीं था, उनको बोला टाके मत दो। फिर मैं हॉस्पिटल से आया एंड चार्ली मेरे से इतना प्यार की, पूरा लिए, कितना हैप्पी। एंड उस वक्त मैं सिर्फ रोए जा रहा था कि एट दिस मोमेंट मेरे पास कोई नहीं है सिर्फ इसके अलावा जो मेरा ख्याल रख सके। तो इसलिए भी बहुत ऐसा ऐसा कहानियां हैं जो हमारा बॉन्ड स्ट्रांग कर देती है। एंड इसलिए भी चार्ली कितना भी बदमाशी करे, कितना भी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम दोनों को साथ ही आगे बढ़ना है ऐसा करके मैं मानता हूँ। और इंजॉय करता हूँ मैं उसके साथ ट्रैवल करना, जर्नी करना, कि लोग मिलेंगे कुछ लोग बुरे जो हमें बोलेंगे कि नहीं इधर मत खड़े रहो, डॉग को उधर लेके जाओ, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते हैं, मैं उनको ध्यान रखता हूँ। छोड़ो फिर से थोड़ी पैदल लेंगे यहाँ पे, तो जो भी अच्छा हो सके वो करना है, फिर एक दिन चले ही जाना है वही, तो मैं यही बोलता बस।

0: जिंदगी जियो, कुछ जमा करने तो आए नहीं हो यहाँ पे, तो जितना अच्छा कर सकोगे करो।
1: अगर चार्ली कहीं इधर उधर चला भी गया, उसके बाद आप स्कूटर जब स्टार्ट करते हैं तो आ जाता है वो?
0: हाँ, वो इसका ये है कि मेरे साथ रहते रहते मैं अकेले, मैं 21 ईयर्स का हूँ, बहुत लोग बुरे भी मिलते हैं, तो ये इतना प्रोटेक्टिव है, मेरा बैग छूने नहीं देती है, मुझे कोई जस्ट टच भी ऐसे गलत से करेगा ना, जैसे कोई मार रहा हो, तो वो बहुत रिएक्ट करती है कि कोई भी डर जाए, एंड कहीं भी उसको मैं छोड़ देता हूँ कि वो मुझे फॉलो करती है पूरा। जैसे स्कूटी में बोलूंगा बैठ जाओ, या जैसे ये स्कूटी स्टार्ट करूंगा, वो कितना दूर भी रहे वो आ जाती है। पहले साइकिल पे था कि साइकिल में जैसे ही चलाया वैसे ही पीछे आ जाएगी वो भाग के, कितना भी उसको रोकने का ट्राई करो, वैसा है। बहुत सही है, मतलब कुछ भी अगर मैं सामान छू दिया, उसको बोला है कि मत छू इसको, कोई नहीं छूना चाहिए इसको, छूने नहीं देगा, वैसा है। अभी 2 ईयर्स 1 मंथ हो गए, किसी को भी बाइट नहीं किया, लेकिन वो डराता ऐसा है कि वो कोई भी डर जाएगা, তো ইয়ে বেস্ট হ্যাঁ।
1: আজি বহুতো শ্রোতাই অনুষ্ঠানটি শুনি আছে, কোনোবাই FM শুনি আছে, কোনোবাই নিউজ অন AIR অথবা AIR রেডিও এপত শুনি আছে, আমাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী ফেসবুক পেজ AIR গুৱাহাটীটো শুনি আছে। গতিকে শ্রোতাসকলক কি কব বিচাৰিব, যে জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি আমাৰ ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা হোৱা উচিত? এই পৃথিৱীখন কেৱল আমাৰেই নে, জীৱ জন্তু চৰাই চিৰিকটি গছ গছনি সকলোৰে মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাৰ কিমান এক প্ৰয়োজন, সেই সম্পৰ্কে আজি শ্ৰোতাসকলক কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব?
0: মই এই এপিল কৰিব চাওঁ, বি কাইণ্ড টু এনিমেলছ, মতলব মত কৰো আপ ৱো জো মাৰতে হো য়া পিটতে হো এণ্ড আপ খানা ভি নহীঁ দে ৰহে হো, তো মতলব ৱো আপছে কুছ মাংগ ভি নহীঁ ৰহে হো, বস ৰাস্তে পে হেন। अगर आप देख रहे हो किसी को मारते हुए, तो चुप मत बैठो। आप वहाँ पे अगर एक बार उसको डांट भी दोगे, आवाज़ भी उठा दोगे, तो नेक्स्ट टाइम से शायद में भी नहीं करेगा, तो आप चुप मत बैठो। यहाँ पे तो अच्छा है, लोग बोलते हैं कम से कम, तो अलग अलग जगह से मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो अगर आप कोई भी क्रूल्टी देख रहे हो तो वहाँ पे चुप मत बैठो, कुछ भी एक्शन लो, लेकिन उसको बोलो, समझाओ कि ये गलत है, नहीं करो। एंड यही है कि आप मत देखो, मारो भी मत एंड देखो भी नहीं किसी को मारते हुए, बोलो वहाँ पे एंड अच्छा से ट्रीट करो। आप अगर कुछ बिस्किट्स है, कुछ अगर आप देख रहे हो आसपास किसी को नीड है, तो बस एक एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है। आप छोटा सा एक्शन लेते हो ना, जैसे कोई एनिमल्स रोड पे है एंड आप कुछ कर पाओ उसके लिए, तो बहुत अच्छा है, वो हमेशा के लिए आपको एक थैंकफुल रहेगा, भगवान भी ऊपर से देखता है, आपको जरूर आशीर्वाद देगा। तो यही बोलना चाहूँगा, आप किसी को इग्नोर करके मत जाओ, अगर कोई स्ट्रे डॉग या कोई भी एनिमल्स रोड पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो इसको इग्नोर करके मत जाओ, आप कुछ भी वहाँ पे रुको, किसी को कांटेक्ट करो, या खुद भी उसको जैसे अच्छा से ट्रीटमेंट करवा सकते हो तो करवाओ, या खुद भी कुछ कर सकते हो, पट्टी ये सब नॉलेज इकट्ठा करो, हर कोई सीखो कि एनिमल्स के प्रति, एनिमल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, खुद से क्या कर सकते हो, अगर कोई एक्सीडेंट में देगा तो कुछ ना कुछ सीखो आप, एंड कहीं भी देखो तो वो काम आएगा। क्योंकि मैं अभी जर्नी में कम से कम 150 डॉग्स को ट्राई किया हूँ कि मैं उसको ठीक कर सकूँ, बहुत सारे डॉग्स को रोड के साइड पे जो मरा हुआ था, कम से कम उसको गाड़ तो नहीं सकता क्योंकि मैं जर्नी पर होता हूँ, तो कम से कम साइड ही कर दो उसको ह्यूमैनिटी के नाते। तो यही बोलता हूँ, आप कोई भी एनिमल्स को देखो जिसके साथ बुरा हो रहा है, तो आप उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो एंड शांत वहाँ से गुजर मत जाओ कि कोई और देख लेगा, नहीं, आप ही हो जो वहाँ से गुजरो, वैसे ही बहुत लोग गुजर जाएंगे, तो आप ही एक्शन लो एंड थोड़ा ठीक करो उसको, वही बोलूंगा।
1: सोनू खसा कोई भल लगिल ए समय खिनी आमी कथा पातिलु एक सपनर कथा, पथत थका जीवबुरर सुरक्षार कथा, आश्रयस्थल निर्माणर कथा, সুচিকিৎসা প্ৰদানৰ কথা, আমি কি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি আজি কথা পাতিলোঁ। 2024 চনত যি যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল, এতিয়া অসমৰ পৰা মেঘালয়, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল প্ৰদেশ এনেকৈ যাত্ৰা আগবাঢ়িব, আকৌ অসমলৈ উভতি আহিব, তাৰ পাছত বিহাৰ নালন্দালৈ যোৱা হ'ব আৰু তাত আশ্ৰয়স্থল নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। হয়তো এই যাত্ৰাত যি ধনৰাশি গোটোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল সকলোখিনি হয়তো নহ'ব পাৰে, কিন্তু যি এক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিল বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ সৈতে, যেন এটা বৃহৎ পৰিয়ালৰ ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। এই পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলে নিশ্চয় ভৱিষ্যতে বিভিন্ন কামত সহযোগ কৰিব, এয়া এক ডাঙৰ প্ৰাপ্তি। আজি এই প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰাৰ বিষয়ে আমি শ্ৰোতাসকলকো অৱগত কৰিলোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ যি সপোন লৈ নালন্দা বিহাৰৰ পৰা এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈছিল, এই যাত্ৰাৰ সফল পৰিসমাপ্তি হওক। আকাশবাণীক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা লগতে সকলো শ্ৰোতাৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ।
0: থেংক ইউ ছ' মাচ।
1: আৰু আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ সকলো শ্ৰোতাক, আহক আমি জীৱকুলৰ প্ৰতি, আমি প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি সকলো দায়বদ্ধ হওঁ।

0: পূৰ্ব দেশত স্বাধীনতাৰ ৰোল নাটখনি শুনিলে। বিভিন্ন চৰিত্ৰত আছিল মহদানন্দ দেৱগোস্বামী, কপিল বৰা, লক্ষীপ্ৰসাদ গোস্বামী, চিন্ময় ভট্টাচাৰ্য, দাৰোগা ৰাজীৱ বৰুৱা, কেপ্টেইন ফিঞ্চ আৰু বেণুধৰ ঋতুপৰ্ণ।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া 12 বজাত হিন্দী বাতৰি আৰু 12:05
2: নমস্কাৰ। আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে জাগৃতি শৰ্মা। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
2: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
4: इस वर्ष उद्यान में

0: सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवणम 26 अगस्त को

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
0: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की।

0: इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
1: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों की पहचान की है। में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही, संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
2: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
3: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथपुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथाचमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू

0: कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कीझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिषा जॉली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
0: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी मुवाबाहू दिनैनि बर' रादाबखौ फरायदों नगेन दैमारिया। हादोरसायाव थांनाय 2 आगस्टनिफ्राय सोलिबाय थानाय सुबुं सानखोनि गिबि खोलोमनि गावारि सानख' फारिखान्थिया दिनै जोबगोन। गाबोननिफ्राय बे सुबुं सानखोनि नैथि खोलोमनि फारिखान्थिया जागायगोन। बे फारिखान्थिया फैगौ 15 सेप्टेम्बरसिम सोलिगोन। आबुं सानखोनि नैथि खोलोमनि फारिखान्थियाव सोरखारजों थिसनजानाय सानख'गिरिफ्रा गावारि साननायनि खारिथिफोरखौ आंजानायनि थाखाय बयनिबो न'खराव हाबहैगोन। सरासनस्रा सुबुंफोरा दिनै हरसिम se.census.gov.in पर्टेलाव गावबा गावनि जानबुं नंखौ बाहायनानै OTP गेजेरजों लग इन खालामनो हागोन। बेवहाय असमियाजों लोगोसे इंराजिखौ हमफाना गासै मोनजिब्रै रावआव सरासनस्रा सुबुंफ्रा गावबा गावनि खारिथिफोरखौ आबुङै सुफुंनो हागोन। गुवाहाटी सावस्रि फाहामथाय फरायसालिमा हस्पिटेलनि लांगोनायाव माखासे गोदान बिथांखिफोर गायसननाय जागोन होना गिबि मन्थ्रि ड॰ हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों। बे सावस्रि फाहामथाय फरायसालिमायाव गासै 2500 कौटि रांनि मोनसे बिथांखिया दासान्दै मावफुं जागासिनोबो दं होना बिथां शर्माया बुंदों। नरकासुर हाजोनिफ्राय सावस्रि फाहामथाय फरायसालिमाखौ गाहाय बाहागोआव थानाय फरायसालि

माने नब्लांनि खाथिसिम लांनो थाखाय गोदानै साननायबो जादों होनना बिथाङा मिथिहोदों लोगोसे गिबि मन्थ्रिया बेयावनो फाहामथाय लाबाय थानाय गोजाम राजखान्थिगिरि हेमेन दासनि सावस्रिनि सायावबो खौरां लाहैयो गिबि मन्थ्रि ड हिमन्त बिश्व शर्माया उननि 5 बोसोराव हादोरसानि गुदि लुफुंथाय खोन्दोआव 150 लाख कौटि रांनि गेदेर थिसुंथाय होनाय जागोन होनना फोसावदों हादोरनि खुंगा 80 उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मेया गुवाहाटीनि खानापारायाव मिरुआरि महरै खुंफुंनाय उदांस्रि साननि हाबाफारियाव बाहागो लानानै ड शर्माया बुंबावदि फैगौ 5 बोसोराव रायजोना लामाफोरनि गुदि लुफुंथायनि जौगाहोनाय सरकारि फरायसालि नोगोरारि मिरु आरो गामियारि गुदि लुफुंथायनि गेजेरजों जौगाहोनायनि थांखिफोरखौ लानाय जादों लोगोसे बिथाङा थांनाय 3 बोसोराव राजखान्थियारि बिथिङाव 3 गुन जौगानाय बांदों होन्नाबो फोरमायो लोगोसे जोबथा दैबानाया खहा जाजानाय शिबसागर सरायदेव जरहाट आरो गलाघाट जिल्लायाव खहा जाजानाय सुबुंफोरनो फिन अनसुंथाय होनानै बिसोरनि फिन जिउ राहा होनायाव सोरखारा एसेबो गोनो गोथो खालामनाय नङा होन्नाबो बाथ्रा होयो सा सानजा ओनसोलनि गासैबो हादोरसायावनो मैया हादोरनि खुंगा 80 उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो नागालेण्डनि कहिमायाव थानाय हादोरसायारि नेहाथारि हौआव खुंफुंनाय हादोरसायारि हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि निफू रिअ'आ हादोरारि फिरफिलाखौ बिरहोयो गावनि बिबुंथियाव गिबि मन्थ्रिया उदांस्रिनि थाखाय दावहा नांनाय आरो जिउ गारनांनाय बिर जोलावफोरखौ गोसोखांना मान होयो आरो बिथांमोननि बिहोमानि सायाव गुवारै बाखनायो मिज'रामाव बुमैया गाजा गोमजायै खुंगा 80 उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै फिरफिला बिरहोना गिबि मन्थ्रि लालदुप माइया गंसे गावनि आथिङाव गसंथा हानाय हादोरसा महरै मिज'रामखौ दानो थाखाय बयखौबो खावलायो त्रिपुरायावबो मैया उदांस्रि सानखौ फालिनाय समाव हादोरसा बेंगिरि इन्द्र सेना रेड्डीआ उदांस्रिनि थाखाय जिउ बावलांनाय दावहारु बिथांमोनखौ मान बाउनानै बाखनायो लोगोसे गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बाहागो लानानै फरायसाफोरजों बन्दे मातरम मेथाइ खनफायो हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ हादोरनि खुंगा 80 उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै मैया लक भवनाव एट होम आयदानि जर'खा हाबाफारि खुंफुङो आसाम पुलिसनि बेन्ड 58 GTC शिलंनि बाइपार्स बेन्ड आरो गुवाहाटीनि सेन्ट मेरिस जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जोबोरैनो खहाब गोनां आरो मुहिनि गोनां खालामनानै दिन्थिदोंमोन जारिमिनारि आसाम एकर्डआ 41 बोसोर आबुं जानायलाय आसुआमैया लटासिल केलिग्राफ फोथाराव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम सोमावसारनायाव मुंख्लंजानायफोरनिसिम बाथि सावनानै मान आरो सिबिथाय जासियो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसुनि गाहाय बोसोनगिरि ड सुमज्जल कुमार भट्टाचार्यआ आसाम एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ आबुङै मावफुंलांनो थाखाय हादोरसा आरो मिरु सरकारखौ दाबि दैखाङो गासै हादोरसा नाङैनो दिनै बारग' गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी बाजपेयीनि थैनाय सानखौ गोसोखांनानै मान बाउनाय जादों 2018 मायथाइनि दिनैनि सानावनो बिथाङा रुंसारि जादोंमोन बिथांनि थैनाय सानाव हादोर बेंगिरि श्रीमती द्रौपदी मुर्मु लेङाइ हादोर बेंगिरि CV राधाकृष्णन आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ दिनै गोदान दिल्लीआव थानाय बारग' गाहाय मन्थ्रिनि मांखरसालि सदैव अटलआव बिबारनि माला बाउना सिबियो आरो मान बाउओ खुंगा 135 इन्डियान अइल ड्रान काप जोलुर बादायनायनि गिबि क्वार्टार फाइनेला दिनै रांचीनि बिरसामुन्डा जोलुर स्टेडियामाव FC दिल्लीआ मणिपुरनि FC रेंदाइनि हेंथायै गेलेदों बे बादायनाया बेलासि 4 रिंगानिफ्राय जागायदों बेजों लोगोसे जोंनि दिनैनि बर' रादाबाबो एसेनोसै

खुलुमबाय बे आकाशवाणी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंगिरिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरनानै दिनैनि बर' आफादखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडियामैफोरनि 411.5 मिटाराव आरो एफएमबिनि 101.6 मेगाहार्ट्जआव बे फोसावनायखौ नोंथांमोना

0: सबो रिलि खालामनानै फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं। लोगोसे निउज अन एआईआर मबाइल एप आरो एआईआर रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानो मोनगासिनो दं। दिनै स्टुडिय' दङ आं नगेन दैमारिया। दान्दिसे उनावनो नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनलांसिगोन। लोंग्रा दैखौ जेब्लाबो सरनानैसो लोंनांगौ, दैखौ जेब्लाबो गोदौजासे फुदुंनानै गुसु खालामनानै लोंनांगौ। मैला गोनां दै लोंब्ला जन्दिस, डायरिया, मेलेरिया, टाइफयड बायदि बेरामफोरा सोमजिनो हागौ। लोंनाय दैखौ जेब्लाबो खोबनानै दोननांगौ, दैखौ गोजों खालामनानै सरनानैसो लोंनांगौ। मानोना दैया गोजोंब्लाबो सरै दैयाव बायदिसिना मैला गोरोबफानानै थायो। गोसोआव लाखिदि दैयानो सुबुंनि गोनांथार मुवा।
1: बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दानिया फोसावनो लादों देहानि जोथोन आयदा। दिनै बे आयदायाव लिरबिदां फरायथिनानै होनो लादों नगेन दैमारिया जथायनो लिरबिदां आमिस आदार आरो बेनि गुन बेनि बागै। जिब जुनारनिफ्राय जाय आदारखौ मोननाय जायो बे रोखोम आदारखौनो आमिस आदार होननाय जायो। ना गुबुन गुबुन बेदर जेरै अमा बोरमा आरो गुबुन गुबुन दाउनि बेदर दाउदै आरियानो जाबाय गाहाय आमिस आदार। देहा रांखान्थि हालसाल आरो धोरोमनि माखासे जाहोननि थाखाय गासिबो एबा बयबो बे रोखोम आदारखौ जाजोबा। धोरोमारि जाहोननि एबा माखासे नेमखान्थिनि थाखाय हिन्दुफोरा मोसौ बेदरखौ जाया आरो मुसलमानफोरा अमा बेदरखौ जाया। थिक बेबादिनो देहानि बेरामखौ नायनानै बे रोखोम आदारखौ जाहोआ आरो बेनि अनगायैबो रांखान्थि थासारिनि थाखाय गासिबो बे आदारखौ जाजोबनो हाया। आमिस आदाराव देहानि थाखाय मोननांगौ आदारखौ थोजासे बिबाङाव मोननो हायो, मानोना आमिस आदाराव प्रटीन आरो आयरनखौ नांगौ रोखोमै मोननो थाङो। ओंखायनो बे रोखोम आदारा देरफुनाय गथ' गेलेग्रा आरो गोरबोआव थानाय बिमानि थाखाय जोबोर गोनां। ना आरो बेदराव 20-25% प्रटीन थायो, बेफोर गोजौ थाखोनि प्रटीन। बेबादिनो हांसो आरो दाउनि बिदैफोराव 13% प्रटीन थायो। प्रटीननि अनगायैबो आमिस आदाराव मेजेमबो थायो। आमिस आदाराव थानाय मेजेमनि बिबाङा आदारनि रोखोमखौ लानानै जुदा जुदा जायो। माखासे ना जेरै इलिस, बार्लि आरिनायाव 19.7% मेजेम थायो। बेबादिनो बोरमा बेदरनिख्रुइ अमा बेदराव बांसिन बिबांनि मेजेम थायो। दाउदैनि गुफुर बाहागोनिख्रुइ गोमो बाहागोआव बांसिन मेजेम मोननो थाङो। बेनि अनगायैबो गोमो बाहागोनि मोनफ्रोम 100 ग्रामाव 1300 मिलिग्राम केलरि गोहो थायो। नानि बिदैयावबो 19.7% मेजेम थायो। गासिबो आमिस आदाराव थोजासे बिबांनि भिटामिन मोननो हायो, गाहायै ए, डि, इ आरो के भिटामिनखौ ना आरो दाउदैयाव मोननो थाङो। अमा बेदराव बि भिटामिन मोननो हायो आरो गोथांनायाव नायासिस आरो भिटामिन सि थायो। खनि संख्रिनि सिङाव केलसियाम, फसफरासफोरखौ जिब जुनारनि आदाराव मोनो। नायाव बांसिनै खनि मुवा मोननो थाङो। बिगुर गोनां नानिख्रुइ बिगुर गैयै नायाव बांसिन खनि संख्रि थायो। लैथोआव थानाय नानिफ्राय आयदिन मोननो थाङो। फारौ बेदराव माखासे बिबांनि आयरन मोननो थाङो। ओरैहाय माखासे बेदराव सोडियाम, पटासियाम आरो मेगनेसियामा जोबोर खम बिबांनि थायो। दाउदैयाव थोजासे बिबांनि केलसियाम आरो फसफरास थायो। बेनिखायनो बुंनो हायोदि आमिस आदारा जोंनि देहा रैखाथिनि थाखाय जोबोर गोनांथार। मागुर खावै बायदि नाखौ गथ' जोनोम होगोदान बिमानि मोजांनि थाखाय थोजासे बिबांनि जाहोनाय जायो, मानोना बेफोर नानिफ्राय नांगौ मुवाखौ मोननो हायो। आमिस आदारखौ मुलि बादियैबो बाहायनाय जायो। बसन्त ओंखारोब्ला 7 सानाव मागुर आरो खुसिया ना गोरान एवनानै बेरामिनो जाहोनाय जायो। बेनि अनगायैबो जाय नायाव मेजेमनि बिबाङा बांसिन बेफोर नानिफ्राय मेजेमखौ दिहुननानै लानाय जायो। बे मेजेमखौ सोलांनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि थाव बानायनानै बेफोर थावखौ गुबुन गुबुन खामानियाव नांगौ बादियै बाहायनाय जायो। आमिस आदारखौ नांगौ रोखोमै दिहुननो हायैयाव बेनि बेसेना गुबुन आदारनिख्रुइ बांसिन। बेनिखायनो निखावरि सुबुंफोरा आमिस आदारखौ नांगौ बादियै मोनजानो हाया, जाहोनाव बिसोरो निरामिस आदारनि सायावनो सोनारनो गोनां जायो। आमिस आदारा माखासे बेरामखौ गैया खालामो जेरै ल' प्रेसार, लोरबांथि आरो बायदि बायदि। एसे सम नोंथांमोना दिनैनि देहानि जोथोन आयदायाव नगेन दैमारिया जथायनो लिरबिदां आमिस आदार आरो बेनि गुन बेनि बागै लिरबिदां फरायसिननानै होनायखौ खोनासंनो मोनबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि देहानि जोथोन आयदायाबो एसेनोसै।
0: दैखौ जेब्लाबो सरनानै फुदुंनानै गुसु खालामनानैसो लोंनांगौ। दैखौ गोजों खालामनानै सरनानैसो लोंनांगौ, मानोना दैया जों गोजोंब्लाबो सरिदैयाव बायदिसिना मैला गोरोबफानानै थायो। मैला गोनां दै लोङोब्ला जन्दिस, डायरिया, मेलेरिया, टाइफयड बायदि बेरामफोरा सोमजिनो हागौ। बेयो आकाशवाणी गुवाहाटी मुवाबाहु दायो फोसावनो लानाय जादों मेथाइनि आयदा रैसुमै खबाम। जों दिनै

बे आइदों नोंथांमोननो खोनासंहोनो लानाय जादों फोसावगिरिनि मोजां मोननाय दोंनैसो मेथाइफोर। गिबियावनो नोंथांमोननो खोनासंहोनो लानाय जादों कामेश्वर बर'नि गाराङाव नैबे दोंसे गोदान मेथाइखौ। मेथाइनि बाथ्रा रुपमल बर'।

गामोसर बरनि गानाव दोंसे गोनां मेथाइ खोनानो मोनबाय। रेसुमै खबामनि आयदानो दायो नोंथांमोननो खोनासंहोनो लानाय जादों रजिता बरनि गानाव नैबे दोंसे गोदान मेथाइखौ। मेथाइनि बाथ्रा कार्तिन्द्र स्वर्गियारी।

रेशमी खबाम पे आईडियो नाथाय लाने जादों गणेश बर गनाव नबीदे गना मेथाई राइडाव हां मिनी हां मेथाई बाथ्रा इंदिरा बर'

आयदायावनो दायो नोंथांमोनो खोनासंहोनो लानाय जादों अनामिका ब्रह्मनि गानाव नैबेदोंसे गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा निनगोमा स्वर्गियारि।

रैसुमै खबाम बे आयदा फसंनायखौ नोंथांमोना आगाजबानी गुवाहाटी मावबाहु दालायनि मिडामिफ्टि 416.5 मिटाराव आरो आगाजबानी धुबुरीनि सेन्टारनि 103.3 मेगाहर्ट्जआवबो रिले खालामनानै फसंनायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ। रैसुमै खबाम बे आयदानो जों दायो नोंथांमोननो खोनासंहोनो लानाय जादों। हेतेस बसुमतारी आरो जन्नति बर्नि गोनाङाव नैबे दोंसे जावजा गोदान मेथाइखौ मेथाइनि बाथ्रा निनगोमा स्वर्गियारी।

0: আধুনিক গীতৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছত চামাচাৰ সন্ধ্যা দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त

0: सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, MSP पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economy.

0: economics and the society's future.
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
2: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जाँच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से

0: से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जांच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
2: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एया आकाशवाणी गुवाहाटीर महाबाहु आरम्भ करिछो अहोमिया सिनेमार गीतर अनुष्ठान चित्रगीत। পুনতে শুনাব লৈছো মৰিচিকা চিনেমাখনৰ পৰা বনশ্ৰী সেনগুপ্তৰ কণ্ঠৰ এই গীতটি।